0: दिन समाजसे बेजी भर गई आमन्त्रण
1: स्थान बाँसरी नगरपालिका एक चेपान समय 2083 स्थान जेठ 10 गते बिहान 11 बजे आयोजक भास्करी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भास्करी।

श्रेष्ठ द्वारा इस ऊंचा पर स्थित विद्युत भार टेंशन केंद्र को निरीक्षण समाचार विस्तार बांसकोटी नगर पालिका को सार्वजनिक सुनवाई आज होने नगर पालिका को आर्थिक वर्ष 2082-83 में हालसम संचालन योजना कार्यक्रम और सेवा को प्रभाव बारे जानकारी स्थानीय जन समुदाय को गुनासो सुन को कार्यक्रम सार्वजनिक सुनवाई को आयोजना करना लगे नागरिक अनुसार सार्वजनिक सुनवाई आज 10 बजे बिहान 11 बजे बांसकोटी नगर पालिका वार्ड नंबर 1 स्थित वडा कार्यालय में संचालन होने जनाएको छ। कार्यक्रम में नगर पालिका का जनप्रतिनिधि कर्मचारी सरकार वाला निकाय संघ संस्था नागरिक समाज संचार कर्मी बुद्धिजीवी तथा संपूर्ण नगरवासी सहभागी बन्न आग्रह गरेको छ। उक्त सार्वजनिक कार्यक्रम को समाधिकरण रेडियो गुणवाले गर्ने जनाएको छ। भारतीय पढ़ने भारत संसार छिगरी नेपाल विद्या करीब 2,50,500 रूपया बराबर को अवैध बरामद सामान सामान बरामद कर जिला प्रहरी कार्य पर्याय प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह कार्की का अनुसार खरिया नगर पालिक सात चौकृषी स्थित सीमा नाथ बाट चोरी पैठारी करी लियाई विभिन्न सामान प्रहरी

खाना मत शिकार और फल फूल आदि युक्त खाना नियमित रूप खाई। जंक फूड का संतुलित खाना खाना लीजिए।

0: से पता लगा छाता नदी प्रकार छपे नहीं है। यहाँ से यहाँ पानी पी शरीर दूर रहता है नी खाई और स्पीड ऐसी जुगाड़ बनेगा
1: इंटरनेशनल नेपाल को भेरी वातावरणीय विशेषता शर्मा बी ग्रुप के साझेदार द्वारा बर्दिया जिला में संचालन हो रहा विपद पूर्व तैयारी उत्पादनशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाभ जारी संदेश।

0: स्वास्थ्य की पत्तियाँ मनस्थलीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता घटी व्यवहारिक स्वास्थ्य सेवा में सेवा सुलभ रूप में वृद्धि यहाँ का स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पड़ पाकर कौशल्य अस्पताल बांसरी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध करती
1: अस्पताल से दे देना सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिर से डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मोटू चेक जांच करी था
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी पशुति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटुक एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याप सेवा उपलब्ध भा प्यारालाइसिसको मुखबाट बिना नसा घाट बुझ्न हात गोडा अनि चल्ना बिरामीको कथाका फिजियोथेरापी तथा एकुपेजर थेरापी विधि बसे उपचार गरिरहेका
0: नसा धपिलो बिरामीहरूका बिना अपरेसन फिजियोथेरापी तथा एकुपेजर थेरापी से सफल उपचार गर्दै
1: 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिरहेका असहाय नागरिक एक महिना अनाथ बालबालिका अपाङ्ग

ईश्वरमा रहनु बसेपछि स्वस्थ जीवन पाए ईश्वरमा रोग झट्ट भयो ध्यानी दिव्य जीवन खत्तम हुई सन्तुलित खाना खाई व्यायाम शब्द गरी धुमपान मदिरा बसे ठुला रही तर अनाज

0: कार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय भर्त्याजी जनहितमा जारी सन्देश
1: समस्या।

0: Very true, darling. No other than that.
1: You'll be able to
0: अक्के घरी पयाल अक्के घरी पानी बरखास्ते हो अच्छी।

0: निशाना रोग बसे बची स्वस्थ जीवन अपनाई
1: निशाना रोग झट्ट बहद ध्यान दिन जीवन खत्म हुई
0: संतुलित खाना खाई व्यायाम शब्द करी
1: धूम्रपान मदिरा से दूर रही तनाव भरा नियंत्रण करी
0: आज निर्णय कांडिक जीवन अजरा निशाना रोग मसे बाँचे स्वस्थ जीवन अपनाई
1: रेडियो गुरुबाबा एफएम का सहकारी स्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया से जनहित जारी संदेश
2: पुर्खाको
0: बचाकर हमें हस्तांतरण कर एक अमूल्य प्राकृतिक स्रोत हो वनस्पति व वन्य जंतु संरक्षण के तहत मानव जाति जीवन संभव नमूना मिला से या कर संरक्षण में हम सब कुछ जुटी
2: पशु अमूल्य संपत्ति अरमानी का काल से संभावना परिभाषक था
0: आदि बुटाई बनने फाकी
2: बनने
0: पिकने खाए गये से उत्तर आदि मजल से बुटा के चलने छोड़ी
2: सुखा मौसम बनने आगे लगना वस्तु सवारी लाइटर लेकर नहीं देगी
0: बनने आगे लगे देखने से लगभग बन कार्यालय सामुदायिक बन को प्रहरी में खबर करी सब कुछ जना सुरक्षित तरीका से आगे बुटाई बाढ़ क्षेत्र अनुसार बनाना आगे लगेगा आगलागी भाई देना कौन थे काम करना मिले आगलागी में से नुकसान हुए बीकोला शुल्क कर 60,000 रूपए समय गरीबों वाला 3 वर्ष पर दूर सजाए हुई शिक्षा उन्होंने बनाम आगे लगेगा वाला आगलागी हुई शिक्षा क्रियाकलाप में करे वो अपराध में शरीक होकर सजाए भागीदार बने डिविजन बल कार्यालय बढ़ दिया फोन नंबर 0484-20-156 कौशल्य अस्पताल प्रणाली बासकली बर्दिया गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हम ऐक्यबद्धता यहाँ कुछ स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पड़े में कौशल्य अस्पताल बासकली में संपर्क कर अनुरोध
2: अस्पताल प्रदान करने सेवा
0: 24 घंटा डाक्टर को प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार सेवा उपलब्ध
2: प्रत्येक दिन बिहान 8 बजे देखि साझा 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डाक्टर द्वारा पेट छाती कलेजो नशा मोटू चेक जांच कर
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा चेक जांच कर
2: प्यारालाइसिस भई मुख बांगीने नशा च्यापिए हाथ खुट्टा नचल्ने बिरामीहरूका लागि फिजियोथेरापी तथा एक्युपन्चर थेरापीको विधिबाट उपचार गरिन्छ
0: नसा च्यापिएका बिरामीहरूको बिना अपरेशन फिजियोथेरापी तथा एक्युपन्चर थेरापीबाट सफल उपचार गरिन्छ
2: बिरामीहरूको सुविधाको लागि 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ असहाय नागरिक

0: این مردم طرف بیمیزن
1: प्राकृतिक स्रोत हो। वनस्पति व वन्य जंतु संरक्षण में तथा मानव जाति जीवन संभव निम्न हमला हो से या कर संरक्षण में हम सब कुछ जुटी
2: पशु बनने संपत्ति आगामी का काल से क्षण भवन कृपा शिक्षा वन से बना हरमानी नियंत्रण करना हम सब उनका दायित्व कर्तव्य हो।
1: आगे मुझे बनने को कैसे समझते हैं
2: हम सब कुछ आपको बना क्षेत्र में हमने रेखा खेलना सुखा समय होना से आगा प्रथम मन संभाव से सफाई करी
1: बीरी चुनाव राष्ट्र की कर आदि बुटाई बनवन ने फाकी
2: बनवन के गांव बने ना काम नहीं करी
1: बनवन पिकनिक खाए गए थे उच्च तमा रहल आदि बुटा से बुटा के जगह छोड़ी
2: सुखा मौसम में बनवन आदि बुटा वस्तु सलाई लाइटर निकालने लगी
1: बनवन आदि लगा देखते से लकड़ बनकाया है सामुदायिक बन को पहाड़ी में खबर पड़ी सब कुछ जना सुरक्षित तरीका से आगे बुटाई बनाओ बिलकुल चल जाना अनुसार बनाओ आगे लगेगा हाथ आगे भाई तेरा कौन से काम करना वाले हाथ आगे मुझे नुकसान बिना दी को अश्लील कहीं का साठ हजार रुपए समय चली वाला वाला तीन वर्ष का कहीं का दो सौ जाए भी सकता वो वर्षे बनाओ आगे लगेगा वाला हाथ आगे भाई से ना किया तलाब निकाले वो अपराध में सही होगा सदा एक भागीदार बने
3: डिविजन बल कार्यालय बढ़ गया वर्ष 1984

किशोरी कुमार रगत कमी अर्थात रक्त अल्पता अधिक प्रभाव रक्त अल्पता विशेष पेट कराउन लगा तो करेगा अनुहार की कमी हो पढ़े में ध्यान दीजिएगा समझे रक्त अल्पता में से बचत लाग कई साग पात दाल गुड़ीरा आरा मछली शिकार और फल फूल आयरन युक्त खाना नियमित रूप में खाई जंक फूड कम करी संतुलित खाना खाना रुचि स्वस्थ

0: शुरू करें और नौ तेरह बजे साग सब्जी फल फूल सभी का पोस्ट कर पूरा खाना ले बच्चा खाना तंदुरुस्त का बनाए पूरा खाना हम समय दुई बरस समय किसान पान जारी करें।
1: रेडियो गुप्ता एफएमको सहकारमा स्वास्थ्य कार्यालय पर्वेश जनहितमा जाने सन्देश
2: जस्तो लाग्छ आएको महिना आइसक्यो भोलि खाइसके यस्तो

0: जीवन में कुछ और भूलेगी।
1: अगर ये बेचने में मिल जाता है ना, मुझे पाने का जीवन में नहीं।

सोचने का तो उसके पास में बिल्कुल जरूरत नहीं डालना हो। सबकी सुनता जी की कमा बारह मगर पता था सर ना नंबर वन सुनता जी कमा तैयार कर लो और कोई रंग का घाट नहीं खाई मैंने कही हम के बेटा का दर्द तो क्या दूध पर बड़ा भारा लागत हो हम के पूरा दिन चलते तो कहीं मिलता बच्चों

सेवा को लगानी करते कोलकाता के लिए आज हम संग वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर रोशन झा तीन अत्यधिक कर्मी होने वाले मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने अत्यधिक कर्मी का समय में

अच्छा अगर मैं महीना हजार भर में प्रारंभ करने का इस विषय में थेरे कर मिले करता उस उत्पादन में समय अनेक उच्च जोखिम को चली वर्षा सस्ते उच्च तापमान को कारण दूध उत्पादन घटी आम

उस हिसाब से स्वप्न के सजीव थे विराट चित्र रहे, जो की यह ऐसा था कि जो रास्ता यहाँ सुखी तो रास्ता नहीं हो,

0: आर्थिक जीवन संभव निर्मला मिला पड़े या फिर संरक्षण में मंगल सब ड्यूटी
1: पशु समूह संपत्ति आगामी का कार्य शिक्षण भवन भी बढ़ सकता और उससे बना आगामी नियंत्रण करना हमारे सबको का दायित्व कर्तव्य हो
0: आगे
1: सब कुछ आपका दोनों क्षेत्र में हर रेखा बनेगा सुखा तुम्हें आया से आगा आकर मरम्मत समझाओ से सफाई करी
0: बीड़ी चुनौत माफू की का आदि बताई दोनों में मिठा की
1: बंदर उत्तर ब्लॉक बनने में काम नहीं करी
0: बंदर में पिकनिक खाए गए से उस क्षेत्र में रहे आदि मजा से बुटा के चलना छोड़ी
1: सुखा मौसम में बरौना आगे लगना वस्तु सेवाई लाइटर लेकर बनेगी
0: बरौना आगे लगना से लगभग बंद कराया है सामुदायिक बंद को पहली नजर खबर करी सब कुछ सुरक्षित तरीका से आगे बताई गर्म मित्र

सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै वित्तीय पूर्वाधार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदंश अनुसन्धान केन्द्र सम्बद्ध सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटकाउका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: परिवार ने इसका काम शुरू करो। छह महीना समय आमा को दूध पाते स्वस्थ बच्चा उजालो भविष्य किसान पान कराओ स्वास्थ्य बताओ।
1: रेडियो को स्वास्थ्य कार्य भारतीय द्वारा चलित मजारी संदेश
2: श्रेष्ठ एग्रोवेटमा विभिन्नताका थान कापीहरू हाइब्रिडमा एमपी 30-30 64-44 युएस 312 आइएमआरएस 57-86 उन्नत जातको धानको बिरुवा राधाकार सावित्री 652 शर्मा मन्सुली राम धान 606 505 301 यामुनी जस्ता मसिनो धानको बिउ पनि श्रेष्ठ एग्रोवेटमा आइसकेको छ।
3: साथै रासायनिक मलमा युरिया